बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान और मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए तत्काल प्रभाव से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि पाकिस्तान से संचालित 480 सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक किया गया है। पुलिस के अनुसार ये हैंडल छात्रों और युवाओं को गुमराह करने के लिए अफवाहें और झूठी जानकारी फैला रहे थे। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। अपनी प्रेस विज्ञप्ति में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और रोमानिया 7 दशकों से अधिक समय से घनिष्ठ और स्थायी मित्रता साझा करते आ रहे हैं, जो आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि भारत रोमानिया साझेदारी समय के साथ लगातार मजबूत हुई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उन्होंने और राष्ट्रपति निकोसो डैन ने सार्थक और उपयोगी चर्चा की और हाल के वर्षों में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक सुविधा और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत ने मानवाधिकारों का सम्मान करने और सभी के लिए अवसर सृजित करने वाली सुरक्षित, समावेशी और न्याय संगत खेल प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल में खेल प्रशासन, खिलाड़ी कल्याण और संस्थागत क्षमता के विस्तार के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग आगाज हो गया है। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहन ने किया।

0: सहर जाए सबु स्थान रे
1: आबाल वृद्ध वनिता समस्तंक पाई
0: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए सबुरी भाषा रे
1: केवल आकाशवाणी।

संपूर्ण देयमुक्त अटे। प्लॉट पिछा केवल एक टंका देवाक पड़ अधिक विवरणी पाई निकटस्थ कृषि समवाय समिति जेकोसी बैंक शाखा किंवा कृषि और समवाय अधिकारी को जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।

0: के पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आप सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
2: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं।

0: निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउस एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्दी सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ifrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार विभाग में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी

0: वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टर्बाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
1: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। अनु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
2: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसीमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है।

0: विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रोमिसेस न्यू लॉ टू टैकल पेपर लीक्स। टुडेज कैबिनेट मीटिंग कम आउट विद स्ट्रिक्टर मेजर्स टू डील विद द इश्यू। डेली हाई कोर्ट सेट्स अप स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर पेपर लीक केसेस आफ्टर पीएम मोदीज अनाउंसमेंट। Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
3: मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
3: मैं जानता हूँ

नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय पाद पद्म तले अनंत कोटि भूमिष्ट प्रणाम। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि, आज तिथि को बाहुड़ा दशमी कहा जाए। किए बाहुड़ आज जे जाते से आज बाहुड़ निजे महाप्रभु स्वतुंडे कही पकईले जोबले आम जो बसुचे ये हूँ शरधा बाली को लग कर गुंडीचा मंडप। गुंडीचा मंडप महावेदी उपर महाप्रभु विराजमान करप समय पर लीलाखेला सारी से पुणी जन्मवेदी कर्मवेदी को चलीजे एवं सेठारे पुणी तांकर कर्म आरंभ करिवे। महाप्रभु जेतेबेले प्रकटित हेले एवं तांको पई गोटे भव्य मंदिर टे इंद्रद्युम्न महाराजा निर्माण करिथिले एवं सेही मंदिर रे महाप्रभु जेतेबेले प्रथम करि रत्नवेदी रे विराजमान कले सेतिक बेले पाखरे ब्रह्मा अछंती, इंद्रद्युम्न महाराजा अछंती, भरद्वाज मुनि अछंती, नारद महर्षि अछंती, केते केते मुनि ऋषि समस्ते अच्छा, अनेक देवता अच्छा, देवाधिदेव श्री जगन्नाथ महाप्रभु भाई भौणी सहित रत्न सिंहासन विराजमान कर। हठात ब्रह्मा कहले कहले इंद्रद्युम्न एथि पूर्वर महाप्रभु यही क्षेत्र में नील माधव रूप से थिले एवं हे इंद्रद्युम्न महाराजा तुम्हारी जोगु से आज दारू ब्रह्म रूप धारण कर। तेणु महाप्रभुंकर दारू ब्रह्म रूप धारण पाई तुम्हें आऊच कारण, तेणु तुम्हें ताकू प्रार्थना कर। इंद्रद्युम्न महाराजा आखिर लुह खसी पड़ा एवं आनंद गदगद हो भक्ति भाव रत्न सिंहासन विराजमान कर महाप्रभु को से प्रार्थना कले एवं से एभली प्रार्थना करिथिले एभली भक्त थिले इंद्रद्युम्न महाराज जहाँ फल प्रार्थना रे संतुष्ट हो महाप्रभु ताको मुह खोलीदेले कहले इंद्रद्युम्न से ताकर प्रथम बाणी थिला हे इंद्रद्युम्न प्रसन्नस्ते मु तुम उपरे प्रसन्न हेछि। धन्य से इंद्रद्युम्न धन्य ताकर भक्ति से भक्ति रे स्वयं अखिल ब्रह्मांड नाथ परम कारुणिक आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन असरण शरण पद्म पलास लोचन अघटन घटन पटियान प्रभु भगवान श्री जगन्नाथ तुंड खोलिले कहले इंद्रद्युम्न प्रसन्न से मु तुम उपरे प्रसन्न होइछि। कौन मत बर मगुच माग मुझे बरदाय बरदानी, तेणु जो मैंने बरदाता से मानक बरदान कै तेणु तुम इच्छा हूँ जहा मगे निठार। इंद्रद्युम्न आखिर केवल आनंदाशु बोची ब्रह्मा ठिया होती से मैं देखुंत कौन इंद्रद्युम्न मगे आउ कौन मागिया को अच्छी जहाँ प्रेम वशीभूत हो स्वयं भगवान बड़देवल रत्न सिंहासन विराजमान करद्युम्न मु तुम पर प्रसन्न या ठारू भाई आउ अधिक कौन गोटे मनीष पक्षे आवश्यक से इंद्रद्युम्न महाराजा चुप ही गले किछि कहिले नी वाक्य स्पिलानी। हठात इंद्रद्युम्न महाराज कही पकेले कहले इंद्रद्युम्न मु तुमको जिते पचारूची कौन तुम बर मगुच माग तुम्हें तो किसी मगुन मुबी तेब तुम्हें जदि किसी न मगुच मो पाखे जहाँ सबुठ

0: आड़प मंडप से आड़प मंडप कौन से आड़प मंडप हूँ आटोप मंडप पटारे निर्मित मंडप जेतेबेले ख्रीष्टीय नवम शताब्दी रे सोमंसाजा जो जाति केसरी महाप्रभु जगन्नाथ पाताल होते सोनपुर गोपाली ग्राम रे 144 वर्ष कि 146 वर्ष से पाताल होता जगन्नाथ को उद्धार कर नवकलेवर कई आणिकी प्रथम पुरी रे प्रतिष्ठा करोटि प्रतिष्ठा कराई गुंडीचा मंडप प्रतिष्ठा करपाई ए गुंडीचा मंडप को आटप मंडप कहा जाए जहाँ मालापाजी में उल्लेख रही जजाति केशरी समय 38 हाथ उच्चर ये जो पटोल पटार निर्मित देउल पटार निर्मित मंडप से ही मंडपर महाप्रभु को प्रथम रख जापारू तार ना हूँ जनकपुरी जन्मस्थान जन्मवेदी कितु श्रोता बंधु ता पूर्वर आउ गोटे देउल रही ना हूँ नृसिंह देउल नृसिंह मंदिर जहाँ वर्तमान आम यज्ञ नृसिंह बोली कहू जो यज्ञ नृसिंह मूर्तिर परिकल्पन आम कहे जे कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत आमर जो टिके आगे आलोचना करुले जे लक्ष्मी रोषशाला जो रही श्रीमंदिर रोषे सब रोष कर रोसे करप मंडप लक्ष्मी रही कारण जो यज्ञनाथ यज्ञ नारायण तर कोल लक्ष्मी मस्तक अनंत ये हूँ आदि नृसिंह एवं प्रथम जजाति केशरी यही स्थापन कलापर ये क्षेत्र नाई पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र अधिवासी हूँ प्रथमतः जे नृसिंह दशवतार भितर चतुर्थ अवतार हो नृसिंह अवतार जो नृसिंह को आदि नृसिंह भाव देखु आउ जड़े नृसिंह अच्छा वर्तमान जो 108 उच्चर देउल जो रही वर्तमान देउल दक्षिण पटरे जो मुक्त मंडप को लगिकी जो नृसिंह अच्छा से होती विधान नृसिंह आदि नृसिंह नृसिंह हूँ मूल सत्युगर जो नृसिंह कथा कहला से अनुसार यही क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र कह जाए यही कथार परवर्ती धारा बरणी प्रदान करने मु प्रताप त्रिपाठी को निवेदन करुच्ची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
1: पदात् श्रेष्ठतम क्रमात् परम पावन सिंधु तेरे तुजो ब्रह्मन राजते नील पर्वत से नील पर्वत रे

जय जगन्नाथ। जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा केवल एक पर्व नुहे, बरं यहा होची लक्ष लक्ष श्रद्धालुंकर आस्था विश्वास और भक्ति भरा दस दिन व्यापी एक महासमागम। यह पवित्र रथयात्रा अवसर में भक्त मानकर सुस्थता और सुरक्षा निश्चित करने

0: सुंदर भाव एपटे माँ आसुचंती त्राहिमा पद्म पत्राखी कात्याय नमस्ते बलदेव से भगिनी सुभद्रा बरदाम शिवा शिवा सत्य संजोग कारण शक्ति जहाँ बिना संसार संसार नुहे कारण कहुई शिव शक्ति समाज
1: अनुष्ठित
0: अत्यंत सुंदर भाव कारण ये प्रभु को लगी प्रत्येक वस्तु आज महाप्रसाद पलटि जा प्रभु को जहाँ वस्त्र हो फूल हो फल हो नैवेद्य सबकि आज महाप्रसाद ए शरधा बाल रेणु रेणु प्रत्येक बालीर रेणु महाप्रसाद पलटि जा प्रभु प्रत्यक्ष सानिध्य पापा देखो से
2: चारमाला ठाकुर विजय हाँ टाइटा खोला हबार विधि कि जो सेवक मान अच्छा से मैंने लोभ एवं अच्छी लोक मानी मानू भक्त मानू देवे भक्त मैंने व्याकुल भाव में टाइर खंडे नापी चाहिए तेरु चारमा न खोल करमी महाप्रभु रथ में जी रथ भितर को जी से समस्ते टाइर रूप टाइर तुलसी ये सब भांगार आम देखिपे
0: आज्ञा बर्तमान सुंदर भाव में खोला जाऊँगी से गंटी की कारण अत्यंत मजबूत भाव में बंधा जाारवाला चढ़ुंत प्रभु से टाहीया जो टाहीया राघव दास प्रदत्त टाहीया जो राघव दास रघुअर संप्रदाय राघव दास मठर दिने अतीत नरेन्द्र समय चंदन चाप जो अनुषित होता से ही समय मदन मोहन जो विग्रह जिते बड़े नरेन्द्र जल से मानने पड़ जाता वर्षा जो झड़ तोफान होता से ही समय ये राघव दास मठ मदन मोहन मूल विग्रह स्वरूप मठ से विग्रह को मंदिर को प्रदान करू प्रभु सेवा निम्ते राघव दास मठ को स्वनंद स्वीकृति मिली से स्वीकृति अनुसार आज पर्यंत निरछिन्न भाव में राघव दास मठर टाहीया प्रभु को लगे जो टाहीया अत्यंत सुंदर भाव निष्ठार सहित एवं जोठी की आज कर राघव दास मठ टाहीया बर्तमान प्रभु मत को ओलारी होपटे आम देखु चारमा विभिन्न मठर संप्रदाय उत्तपाश मठ राधवल्लभ मठ एवं एक सहित अनेक मठर महंत मैंने चामर सेवा करपटे आसुचार माँ जगजननी अपेक्षा कर समय से विश्राम नहींता कोल किपर भाव कोलाग्रत कर पुत्र मैंने घंटुआ मानकर घंट सुभद्रा माँ रथ घंटुआ बलभद्र रथर घंटुआ एक कालीन सुंदर भाव एकता त्रिताल भाव जो घंट बजाऊ देखते ये चमत्कार घंटुआर जो घंट नाद समग्र विषय जमी आज रथयात्रा विरल से भाव घंटुआ जो घंट बादन ताद समग्र विषय विरल एभली परंपरा नीति कौटी ना से ओडिया जाति गर्वित ओडिया जातिर अस्मिता ओडिया जातिर इतिहास सांस्कृतिक सामाजिक चलीचलन जदि थाए ता हूँ जगन्नाथ स्वरूप से प्रभुंकर नारे आमे समस्ते आज एकाठी हो शरधा बाली में जो छात गुड़िक रही आम देखिपे श्रद्धा मान से बहुत भक्त से अवलोकन करुं प्रभुंकर दृश्य को कारण ये सुंदर दृश्य देखा विरल आ माँ सुभद्रा बर्तमान देखु आसुचार सी।

0: प्राप्ति ही जहाँ तो जीवन रे पाइनु मुते प्रदान करी आउ क्षम माने कौन प्राप्त रक्षण जहाँ तत मु दुर्लभ जिनस देली ताकु सुरक्षा करी जल को 5 कोटी टंका आम निश्चिंत बसी पारानी जदि टे मान लिक हो गला तेज निश्चित भाव ता मुंडटे कटिजो तेणु भगवान कहले मु दुर्लभ वस्तु दिए एवं ताकु सुरक्षार भार मध्ये मु निए
1: सेहिति जो रोगक्षेम कथा कहले अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति एवं प्राप्त वस्तुर रक्षण तेणु आमको भगवान बहुत कथा देले आमे ताकु धारण करिबा आमे ताकु रक्षा करिबा निज भितरे सबुबेले से भावना रे रहिबा सेटा आमर हुए नहीं कारण आदि पवित्र भावना आसुचि खाली से भावना चली जाउचि ते भगवान कहउचन्ति तू जदि अनन्य चित्त हो कि मो सहित रहीबू ताहले तते मु अप्राप्त वस्तुर प्राप्ति मध्ये करैबी एवं से प्राप्त वस्तुटि को तू किभलि धारण करि रखिबू ते शक्ति मध्ये तते देबी
0: देबी जा फलरे तू निश्चित होइ जेबू केते बड़ कथा तेणु आमको निश्चिंत कर दउचन्ति निजे कहउचन्ति केते सबु सत्वे एवं निजे आसुचन्ति निजे आसिकरि कह करचन्ति कहिले अरे मोर केतोटा यात्रा तू आ दोले च दोल गोविंदं चापे तु मधुसूदन रथे तु बामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते जदि दोल यात्रा रे मु दोल गोविंद होकरि जेतेबेले दोल वेदी रे झुरुथिबी सेतेबेले मते टिके दर्शन करिबु आउ चापे च मधुसूदन जेतेबेले चाप होउथिब चंदन यात्रा होउथिब मु मधुसूदन होकरि बसिथिबी मोर उभय पटरे श्रीदेवी भूदेवी थिबे मोर आगरे आउ गोटे चापरे रामकृष्ण थिबे पंचमहादेव थिबे चापरे आमे बुलुथिलु एही बेले रे मधुसूदन रूपे मते जदि दर्शन करिबु मुक्ति लाभ करिबु

0: लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम एक अच्छा सार्थक भेद क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्षी विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: कारगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरण उत्सव है।

0: खच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पिठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार

0: चरण अरविंदम। सही महापुरुष सही विराट पुरुष भक्त जन बांधव महाप्रभु जगन्नाथंकर दिव्य लारे भक्तिमय हो जाछि बड़ दांड आउ समस्ते निज चलचंचल करछंती महाप्रभुंकर सेवाए कहीं गजपतिंक वर्तमान रथ निकटवर्ती हेबार जो परिवेश रहीगलाणी सब प्रस्तुति भितर आउ अपक्षण भितर गजपति महाराज रथ निकट उपस्थित हो सेवा प्रदान करिवे। इति अवसर रे आम केन्द्र सम्मुख भाग रे
1: वर्तमान जो परिवेश अछि पाग अनुकूल सुंदर पवन बहुति लोक माने जीवा आसीबा करछंती लोकंग भितर जो उत्साह तो उद्दीपना कौन पे उत्साह उद्दीपना
0: आपण ओटे कथा देखंतु श्रीगुणीचा दिन जिते प्रतिकूल परिस्थिति थिला को लोक कम थिले तेणु भक्त केवे चाहेना अनुकूल पाग भक्त चाहेना जगन्नाथ पाखे से केवल केवल चाहे मो कालिया जोठी मुठी से जिते विपत्ति आसू जिते प्रतिकूल परिस्थिति आसू से केवल चाहे मो कालिया जोठी अच्छी मु दिवारात्र से ही जगार रही जहाँ आज आम देखा पाचे
1: कनई गाई गोठ कनई जोठी सेठी भक्त माने रुंड होइ कि रहंती
0: जेमिति दोळ हेले विमान बारे दोळ ठाकुर को नेगी जीवा पई सेई परि आदि ए जो स्वयं लीला रथयात्रा ए रथयात्रा रे महाप्रभु को पाखरे विमान सहित कांधुवाई सहित आमे समस्त हेले जने जने सेवायत भिन्न भिन्न भावरे आमे महाप्रभु को सेवा को अर्पण करूछे।
1: सेई पे मोर विश्वास होउची जे जगन्नाथ धाम रे महाप्रभु जगन्नाथ होउचनी सर्व जनमान्य राष्ट्र देवता श्रीमंदिर रत्न सिंहासन छाड़ी नौ दिन धरिकी महाप्रभु आसी ये जन्मवेदी जनकपुरी रहीकि आज फेरुंच ये एक

0: रहिबा परस्पर भितर भाईचारा भाव सृष्टि करी वसुधैव भाव भावधारे उद्बुद्धई समस्त को अपनार करिनबा ये ज्ञान आउ कोठी मिलिबो नाही
1: जेते बेले महास्वर को आमे पचारिछु से कोठस्वर महास्वर से माने कहिचंदि आमे मध्य निजे अवगत नुह महाप्रभु केते प्रकार अन्न व्यंजन बा केते प्रकार सुखिली भोग भोजन करुचंदि तेणु ताकि गोटे साधारण भाव में षाठी पौड़ी बोली गोटे वर्णना रखी दि जाए कि महाप्रभु अत्यधिक केोजन
0: कर भोग
1: सीमित ताधर दुश प्रकार नाम सब रही
0: शुखिली प्रकार भोग जो भोग को वर्णना कले राति पाई शब ना भावमय देवता एत महान देवता सब महान से देव महान दांड महान चक्र महान मौददी महान महाप्रसाद महान
1: एक समय रे आम महाप्रभु निकट रे आमे एपरी सौभाग्य सुजोग सब पाइचे किए दर्शन करुचे किए श्रवण करुचे किए कीर्तन करुचे किए सख्य करुचे किए सेवा करुचे किए आत्मनिवेदन करुचे किंतु विभिन्न प्रकार रे आमे महाप्रभुंकर सान्निध्य पाई निज को गौरवान्वित मने करिबा इति अवसर रे
0: अहोभाग्य अहोभाग्य अहोभाग्य
1: निश्चित भगवान
0: यदि आम समस्त को कृपा करंतु दया करंतु एवं आम विचारधारा को संशोधित करबा पई हमको प्रेरणा दियंतु
1: जो कथा वर्तमान से चौचंचल हेलाणि सदावाली तेणु प्रथम केन्द्र को आपण मानको श्रोता बंधु आमे नै जाउछु सेठारु दिव्य कथा प्रसंग श्रवण करंतु
0: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
2: जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ठीक प्रथम केन्द्र तले गर्भवती महाराजा दिव्य सिंह देव मेहनारे आसीन अच्छा जोड़ हस्तरे

छेरा भरा कार्य को समापन कर बर्तमान जगन्नाथ रथ अभिमुखे यात्रा करुछंती। किंतु सबठारो गुरुत्वपूर्ण विषय आज श्रद्धालु भक्त ए सरथावाली प्रांगण में दंडा मान चलती विष्णु आ साक्षात विष्णु दर्शन करने सहित आज जो महा आनंदर मिलनर यात्रा को अनुभव करुछंती। से अनुभव भितर किंतु प्रशासन स्तर में तत्परता देखा जाइछि। एपटे जगन्नाथ महाप्रभु जो तांगर सेवा कार्य जो आमर जो छेरा पहरा कार्य करने को जिते बड़े गजपति जात्रा करुछंती से नंदीघोष रथ को एपटे किंतु बड़ भाई बलभद्र तालथुर रथरे भोई सेवक माने कोठ सुहा माने समस्ते मिलित भाव में चार माल को वर्तमान काढ़ी नौचंती। केते तत्परता रही महाप्रभुंकर आज जो जात्रा को श्रृंखलित कर समग्र विश्व को पुष्पायित कर।

0: मन्दिर मार्जनादिषु श्रुति चकाराच्युत सतकथोदय ये थे अम्बरीश महाराजा चरित्र जहाँफल से परम भक्त एवं तांको चरित्र भागवत अति सुंदर भाव में व्याख्यान करा मन प्रभुंकर चरणारविंद रही सबई मन कृष्ण पदारविंदयु कृष्ण भगवान जगन्नाथ चरणारविंद मन रही सब बेले विनम्र भाव एवं साधु संत को देखिले से निश्चित भाव में मथानत करती यथोचित व्यवहार प्रदर्शन
1: गोटे बड़ कथा है कथा बड़ धीर कथा बड़ धीर कथा
0: धीर एवं मार्जित
1: मार्जित एवं प्रशांत चित्त ताको कहंती आपण प्रशांत चित्त हेले ही आपण कथा मध्य धीर हबो एवं मार्जित हबो सौजन्य सहित आप समस्त सहित कथाबार्ता करिवे तेणु एवळिया सबु गुण गुड़ाक भितर अछि बोली एवं आमर गजपति हेथिबारु से आमे मध्य गर्वित अनुभव करिवा कथा रे एवळी उड़िया जातिर जने गजपति अछंती जांकर ए सबु गुण गुड़ाक आमे आहरण करिवा सिखला भलिया स्थिति रे से अछंती आउ गोटे कथा हूँ जे ये जो रथ से गजपति महाराज सेवा करमर मोर गोटे मन पड़ू कथाटा यो भावनाटा मन भितर आसव जे जो ब्रह्म को सी उपासना करई ब्रह्म निज भितर भी अच्छा यो भावनाटा ये भावनाटा आमर उपनिषद भावना वैदिक भावना बोली आपड़ा कहतु आप मुंडक उपनिषद गोटे मंत्र अच्छे मंत्री हूँ भिद्य हृदय ग्रंथि सर्वसंचय कथा अच्छी तेणु पर एवं अपर ये उभय ब्रह्म को जे दर्शन कर परम ब्रह्म किए ना जे सर्वत्र व्यापी रही अपर ब्रह्म किए जे अंतर भितर अच्छा तेणु अंतर भितर ब्रह्म एवं परिव्याप्त होता ब्रह्म ये उभय साम्य भाव देखुवा गजपति हूँ आमर दिव्य सिंह गजपति
0: परम पूज्य गजपति
1: परम पूज्य गजपति
0: जगद्गुरु शंकराचार्य प्रति यथे

0: जय जगन्नाथ। वर्तमान छेरा पहरार शेष पर्यायर आम उपनीत। ये छेरा पहरा आप देखुं शुणुं गजपति महाराज शेष जो दर्प दलन रथ छेरा पहरा कार्य कर महान कार्य। 1972 मसीह गजपति महाराजा को ए छेरा पहरा कार्य निवृत्त कर किंतु अटकी गले महाप्रभु चारमा निकट रे फुंकिले नाही कले नाही एवं शेषे आमर जड़े सहकारी प्रशिक्षक सहकारी निर्देशक आसान जे टेम्पल आडमिनिस्ट्रेटर से जाके तो अध्या पड़े सप्लाय सरला तुरंत जा गजपति खबर दिं गजपति आसिक लबे ये पड़गले डगट होकर महाप्रभु चलीगले नदीघोष रथ को। ये एक महान परंपरा ये कौन सी भेदभाव ना राजा प्रजा धनी दरिद्र सान बड़ या भितर किसी भेदभाव ना आज्ञा। ये एकमात्र देवता जहाँ पाखे निउछेली होकरी दुई हाथ समर्पित होकरी सेवा मनोभाव नहीं कि आप लंब होकर पड़ जाए ना सब क्षमा करदे महाप्रभु। ये क्षमार सगर ये दयार सगर से लक्ष लक्ष भक्त मान धाई आसुनी चली आसती ब्रह्मांड को महाप्रभु को दर्शन करेंगे भक्ति नैवेद्य अर्पण करेंगे मनस्कामना पूरण करने चोड़ निउछेली डाकबे यही हूँ भाव ये
1: हृदय द्रवीभूत हो जाए। गजपति महाराज आमको प्रणाम करुछंती बोली किंतु ये जो संस्था रे अछंती ये जो तथाकथित स्कूल संस्था ये सुंदर वार्ता ये
0: वर्तमान जो भली भाव रे दर्प दल मथरे महाप्रभु गजपति जे की चलती विष्णु ठाकुर राजा आद्य सेवक से वर्तमान जो भली भाव रे

0: चूड़ांत हो सारे नंदी घोषर मध्य चारमाल खोला सर आउ परे परे माँ कपिल्यवासी सुभद्रा चारमाल खोला हेबो तबे आपण माने जानी खुशी हेबे आमर ए द्वितीय केन्द्र जहाँकि बड़शंख पाख आम अवलोकन करे आउ श्री मंदिर पर्यंत ये संपूर्ण परिवेश बड़दाण्डटी जन समुद्र एक उत्ताल तरंग सदृश केवल मुंड पाड़गुड़िक मुंडर दर्शन आम कहे आउ बड़दाण्ड आमको देखा जाऊना इति अवसर फेरी आसुचंती आद्य सेवक गजपति दिव्य सिंह महादेव दिव्य सिंह महाराज जहाँ आगे दुईटी छति दर्शन करेंगे आपण मैंने से छति दुईटी हूँ कला छति धला छत्री आम मैंने अनुभव करवा जोबले जगन्नाथों पहणी हुए बलभद्र महाप्रभुंर पहणी हुए कला ठाकुर पाखे धला छत्री आउ धवल वर्णर ठाकुर जेक बलभद्र पाखे कला छत्री धरा होता है मात्र गजपति महाराज पाखे दुईट छत्री त्रास चामर पड़ू सेत चामर राजगुरु सहित आसुचंती ये जो लेकाकरण देउलकरण एवं घटुआरी ये जो वर्णाढ़ परिवेश ये जो परंपरा एत देश प्रसूत सकाशात अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिखेर पृथ्वीयाम सर्वमानवा पृथ्वी सबु मानव माने आमर ए वर्णाढ़ सेवा को आमर ए नीति परंपरा को आमर ए आदर्श को आमर ए परिवा पणिया को समस्ते अवलोकन करुछंती आनंदित हेउछंती गर्व अनुभव करुछंती आपण माने जानी आश्चर्य है जेहेतु अल्प किसी समय व्यवधान रे महाप्रभुंकर दिव्य तालध्वज रथ तना आरंभ होइजिवो सेतिपाई उभय बड़दाणर उभय जो कोठा गुड़िक अच्छी से अट्टालिका विभिन्न जो महला सब रही
1: अल्प समय पर पहरा वर्तमान वर्तमान जो भाई भाव दर्प दल मत महाप्रभु
0: ये आदर ये आग्रह ये भाव ये मानसिकता

0: बढ़ी जाए
1: एथिरु रक्षा पाइबा पई घर चारि पाखरे ओ घर भितरे कोनोसी स्थान रे 7 दिन रु अधिक समय पानी जमि रहबाकु दियंतु नाही
0: पानी को धरि रखुतिबा भंगा डब्बा सडी अव्यवहृत हांडी टायर आदि नष्ट कर दियंतु
1: घर पाखरु बणबदा सफा करंतु
0: नाळ नर्दमा रे ओ खालुआ स्थान रे जमि रहुतिबा पानी मशा निरोधक औषध पकाइबाकु स्वास्थ्य कर्मचारी बा पौर कर्मचारी को सहायता करंतु
1: दिन हेवा राती सोइबा बेले मशारी व्यवहार करंतु
0: शरीर को यथा संभव अधिक ढांकीबा भली पोशाक पिंधंतु
1: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग
2: आलुमिनियम रो शक्ति देशर प्रगति महाप्रभुंक आशीर्वाद रे सभिंक समृद्धि बाहुडा यात्रा ओ सुनावेश अवसर रे नाल्को पक्षरु हार्दिक शुभेच्छा
3: जय जगन्नाथ श्रोता बंधु वर्तमान
4: बड़ ठाकुर बलभद्रंक ताळध्वज रथ टणा आरंभ होइगला एवं जोठी रथ थिले सेठ पाखापाखि कोड़े हाथ पर्यंत रथ चलीगले टा चली आम देखु बहु वरिष्ठ पदाधिकारी एवं राज्य पुलिस डीजी समेत बहु वरिष्ठ पदाधिकारी से रथ दौड़ी धरिक टाणुंटे रथ जीवारे कि असुविधा होने मन होती बड़ ठाकुर अपेक्षा करते बड़े रथ दौड़ी जोचा हे और भक्त मैंने रथ को टाणी नेाध्वज रथ को बहुत सुंदर भाव में रथ आगक अग्रगति करपन तो जानते रथ जीवापी जो सरदा बाली से सरदा बाली आजिकल कंक्रीट हो जाए बालीर आचरण टिके टिके पकाई सरदा बाली भ्रम सृष्टि करने सरदा बाली रूप देवाई तेणु रथ जीवन किसी असुविधा भी ना जो रथ ठिया

0: ही ताहांको संगते बसी थाई मोते नचे नमती कही भगवान श्री जगन्नाथ अपेक्षा करिछंती केतेबेले ताकर रथ टणा हबो एवं शरदा बालीरु से धीरे धीरे धीरे धीरे बड़दाण्ड आड़क अग्रसर हेबे एवं आहुरी बहुत कार्य रही मौसी माँ से पोड़पिठा बिल्कुल प्रस्तुत करके रखिछंती जेतेबेले प्रभु जीवे सेतेबेले से ताकु पोड़पिठा खुआइबे एवं आहुरी गोटे बड़ काम हबो जेतेबेले श्रीनगर पाखरे जाइकि महाप्रभु पहुँचे तेणु बहुत कार्य रही आगरे दुई रथ से सीधा जाई पहुँची जी सिंहद्वार किंतु श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ जेतेबेले जाई पहुँचब श्रीनगर निकट सेठारे से रहिबे एवं एही समय रे महालक्ष्मी ठाकुरानी चाहणी मंडप को आसीबे देखिबे जे महाप्रभुंकर एही पीत लोहित वर्णील जो नंदी घोष रथ से बर्तमान श्रीनगर निकटवर्ती है तेणु से बाहर बाहरिकी आसबे पालिकी आसबे सेवक मान गहन आसबे बेश पाट मकुटा पिंधि एवं जेतेबेले से आसबे सेतेबेले बलभद्रंक सम्मुख भागरे गोटे कपड़ा पड़ी तार कारण हूँ ये हूँ देढ़सुर से भाई बहु तेणु देढ़सुर भाई बहुत जो संपर्क आपण आज यही जो रथ भेट समय आपण देखिए तापर से अतिक्रम कर आसबे नंदीघोष रथ निकट को महालक्ष्मी ठाकुरानी आज महालक्ष्मी ठाकुरानी आसलापर मानभंजन करने प्रक्रिया आरंभ हम गजपति महाराजा से निजे टेकिकी माँ को जगन्नाथ सहित मिलन करेंगे ये दृश्य अति अपूर्व दृश्य ये आज अनुष्ठित हे एवं महाप्रभु ठार आज्ञामाला आसी लागू आज्ञामाला पाइला शांति से जीवे किंतु तथापि मनरा कुहलिब मन जमा सफा हेनी कहीं कि भाया कम कले प्रभु ताकि एडे बड़ यात्रा करे फेर फेरिकी शीघ्र पलि आसते पुणी आहरी तीन दिन बाहुड़ा जात्रा परे सुनावेश सुनावेश पर अधरपणा अधरपणा पर नीलाद्री विजय हेले जा दर्शन करी तेणु रागवापी जथेष समय मिल जाऊँ राग से हीदिन शांत हे जो दिन महाप्रभु नीलाद्री विजय करे बड़ देवर जो बड़ कबाट खोल जय विजय द्वार खोल एवं महालक्ष्मी ठाकुरानी जगन्नाथ निकट में जेतेबेले रसगोला भोग सर तर अभिमान भंग हम महाप्रभु जीवे तेणु वर्तमान आउ अधिक मु समय ने आम पाखे अच्छा आमर वरिष्ठ घोषक एवं विद्वान डॉक्टर शांतनु रथ महोदय मुझे निवेदन करुच्ची से धारा बरणी प्रदान करेंगे।
1: जय जगन्नाथ। आपण मानक आम श्रोताबंधु सूचना देवा चाहिबु ये जो तीन अंग विशिष्ट रथजात्रार तृतीय अंगे आम उपनीत होचु। प्रथम अंग थिला श्रीगुंडीचा जात्रा महाप्रभु श्रीमंदिर बाहरी घोष जात्रा आसिले आड़प मंडप गुंडीचा मंदिर से सात दिन अवस्थान करी नवम दिन में प्रत्यावर्तन यात्रा प्रत्यावर्तन यात्रार वर्तमान स्थिति होची जे बड़ ठाकुर बलभद्रंकर तालध्वज रथ पाखापाखी बड़ शंख पाखे पहुँचंती माँ सुभद्रांकर गल्पदन रथ यही शरदा बालीर प्रथम केन्द्र गुंडीचा मंदिर सामनारु किछि बाट आगे की रही आपण माने जानी रथ मानकर गोटे निर्दिष्ट व्यवधान नहले रथ गुड़िक टणा हो पाए ना तेणु यही माँ सुभद्रांकर दर्पदलन रथ बड़ गण बड़

0: ପ୍ରେସରଖେଳ ନାଟ୍ୟଧାରା କ୍ରମରେ ରାଧା ପ୍ରେମଲୀଳାର ଏକାଦଶତମ ଭାଗ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସାଧୀ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण

0: वैवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बलारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
1: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे जुड़ी घटनाएं भारत के लिए गहन चिंता का विषय हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संघर्ष शुरू होने के बाद से ही भारत संघर्ष में शामिल पक्षों अमरीका और ईरान के साथ साथ अन्य क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के साथ लगातार संपर्क में है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुज कुमार। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced regarding bringing a bill with provisions for strong action in cases of paper leaks will be introduced in the Parliament. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.

0: आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय बर्तन 6:15 शुणु सन्थ तुलसीदास रचित श्रीरामचरित मानस 100 भाग।
1: एपिसोड 100 100।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी सामने 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत रहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: परे परे देखु हम तुम्हारे चलचित्र गई सोनू निगम।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम भी जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गाँव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय

0: ଶୁଣିଲେ କୃଷି ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ କେତୋଟି ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ଗୀତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦିଲୱାଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ଗୋଲକଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି କୁମାର ସାନୁ ଏବଂ ଅଲକା ୟାଗ୍ନିକ।
1: तू सपना से बहुत प्यार करता है, इसलिए तुझे हर किसी की आवाज सपना की ही आवाज लगती है।
2: सपना सपना कौन थी?
3: मेरी अपनी, मेरी।
4: अरे हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती थी रूबी, वहां जावानी कम था।

0: अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को भी तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग 2 घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन चार बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 3 मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध

0: एक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुड़कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 40 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
2: आंध्र और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज

0: संख्या की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्य प्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉक्टर कृष्णा वर्षा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आमली और कुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदुनाला राहुली के पास हुई, जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की

मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं सचिन देव बर्मन की संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाज किशोर कुमार की और फिल्म का नाम आराधना।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। स्वर लता मंगेशकर का था और फिल्म का नाम था अनामिका।

0: लता मंगेशकर के गायी फिल्म रजिया सुल्तान के इस गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

जब फिल्म शहीद को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया गया, तब ये फिल्म उन्हें बहुत पसंद आई और उन्होंने मनोज कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे कहा, क्या मेरी नारी जय जवान जय किसान पर फिल्म नहीं बन सकती? मनोज कुमार ने दिल्ली से लौटते हुए कुछ रजिस्टर खरीदे और कुछ नए पेन। दिल्ली से मुंबई तक के सफर में फिल्म उपकार की कहानी तैयार हो चुकी थी और इस तरह सन 1967 में आई रुपहले पर्दे की एक नायाब बेमिसाल फिल्म उपकार।

उपकार के इस गाने की एक दिलचस्प कहानी है। गुलशन बावरा रेलवे में क्लर्क हुआ करते थे। रेल गोदाम में पंजाब से आती थी गेहूं की बोरियां। जब गेहूं की इतनी सारी बोरियां उतरा करती तो गुलशन बावरा के कवि मन में एक पंक्ति को थी, मेरे देश की धरती सोना उगले। बरसों बरस ये पंक्ति उनकी डायरी में बनी रही। बाद में मनोज कुमार ने इसे फिल्म उपकार में शामिल किया। सन 1970 मनोज कुमार अपनी दूसरी फिल्म लेकर आए पूरब और पश्चिम। यह फिल्म परंपरा और पश्चिमी संस्कृति के टकराव की कहानी थी। इस फिल्म की चारों तरफ बड़ी तारीफ हुई और ये गाना जैसे भारत के गौरव का गान बन गया।

फिल्म शूर के गाने बेहद मकबूल हुए। सन 1974 मनोज कुमार ने एक ऐसी फिल्म बनाई, आजादी के बाद बनते हुए भारत के सपनों से थोड़े से मोहभंग की कहानी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने बताया कि हम सब अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन देश में हैं कुछ समस्याएं जिन्हें निपटाना जरूरी है। यह फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मनोज कुमार के साथ नजर आई जीना तमान।

इसके बाद मनोज कुमार नजर आए फिल्म 10 नंबर में। मनोज कुमार दिलीप कुमार के हमेशा से जबरदस्त फैन रहे हैं। दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका उन्हें मिला सन 1981 में अपनी फिल्म क्रांति के जरिए।

सन 1989 में मनोज कुमार ने बनाई फिल्म क्लर्क और सन 1995 में मैदानी जंग। आज के फंता कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और लेखक मनोज कुमार पर। शोध, लेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।

0: हस्ते शंख चक्र हस्त।
1: निधि सांते, निधि सांते घरे अच्छा?
2: के दासिया, अरे आ बसी बसी आज तोरी कथा तुम भावुले का सका श्रीक्षेत्र बाहरी पड़े नवजीवन दर्शन करी रात्रि विश्राम लिया पर दिन देखु रथरे देखी गुंडीचा बासी सकाल सकाल गाँव को फेरी आसता।
1: हाँ सांते से लगे पड़ी लुगा गामुछा बुणी सारी तुम पाक धाई
2: बुणी सारी लुगा गामुछा

0: baru buka birazcık muka bakar insan de bak.
1: Ha ha hey diyor hey diyor hey diyor. Mu zepte dakili sade, se sunuyor mu neyi? Rattı da sara, bana damla duyle pardi verila.
0: Mu kana kari bir sade matte kum.
1: Acha ha ha ha. Dosta mı ne dosta mı? Dekha kona uçtu. Arey dasya. Ee dasya. Tabii ben de pagol biri uçtu kengi.
2: Ha ha mu pagol hiç hiç sade. मु पागल हो जाई छी देखु ना सुरंग दिसे हांडी धार मध्य धवळ पेज सर ता मध्य साग दिसे कोळा एही तो श्वेत पद्म डोळा
1: ओहो बुझिले अरे दासिया दासिया ए भाव पाइलो तो कहि कृपा की कले भावग्रही आमे तो ब्राह्मण गोसाई ए भाव कहीं छुई नहीं कि बुझे ये दिन जन तोते प्रसन्न भगवान
0: कौन कहू सांदे मु किछ बुझी पर नहीं सांदे
1: तो जीवन धन्य हो जाई छी कमली तो जीवन धन्य हो छी आमे ब्राह्मण गोसे हे केते शिवा पूजा करी जो भाव पाइनु ता दासिया पाई छी से जण श्रेष्ठ भक्त
2: निधि सांदे
1: अरे तू मते शांत डाक न रे दास तू मुठ मध्य बड़ छोट कुल रे जात हले मधु तो सना हने कुछ एबे तो भक्त दासिया
0: गुणिया डाकी बिनि संते
1: गुणिया कोन करबो कमली गुणिया कोन करबो निजे दासिया त बड़ गुणिया तू पेज ऊपर सर काढ़ी दे साग पळक उठे अलग कर दे से आनंद रे भोजन करबो
0: हे सते रे

0: ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଗୀତଟିଏ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11 ବାଜିଯାଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ଇଂରେଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେଟେଡ୍ ଶୁଣୁଛି ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
2: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के

0: तैयार पुलिस ने बताया है कि आपातकालीन सेवाएं जिनमें एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवाएं, अधिकृत सरकारी वाहन शामिल हैं, निर्धारित अनुमति के अनुसार संचालित होती रहेंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एनटीए ने एक बयान में कहा कि यह उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधा कृष्ण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 40 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। चीन के हांगझोउ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट्स से चूक गई। चीन की याओ क्यांग सुन 243.6 पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The Union Cabinet today approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. In a video message yesterday, Prime Minister Modi had announced about bringing a bill with provisions of strong action in cases of paper leaks. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency has terminated 47 officials from service. According to sources, legal and criminal action will also be taken against some of these officials. This is part of a complete overhaul of NTA that has been in controversy over paper leaks. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the UPSC. NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that is being implemented in line with the recommendations of the High-Level Committee of Experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh today met the CJP delegation in New Delhi. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system. Mr. Nadda said that the CJP had put forth three main demands and also suggested some reforms to curb examination paper leak. Mr. Nadda added that the government will hold another round of discussion with the delegation tomorrow.
2: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.